इट हैपेंस, मैं सताक्षी आपके साथ है। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM मेरे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। और देखिए, जिंदगी में ना हमारे सामने दो शब्द आते हैं, एक है लोनलीनेस और दूसरा है सॉलिट्यूड, यानी अकेलापन और एकांत। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर देखा जाए तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन तब महसूस होता है जब आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है, लेकिन एकांत वो खूबसूरत पल है जब आप खुद के साथ होते हैं। जब आपको अपनी ही सोबत पसंद आने लगती है तो दुनिया की कोई भी तन्हाई आपको डरा नहीं सकती। कभी खुद के साथ भी एक कप कॉफी इंजॉय करके देखिए, बातें बहुत दिलचस्प होती हैं अपने साथ।

क्या कैसे गुजर रही है सुबह? वैसे ये सुबह, ये मॉर्निंग आगे बढ़ती जा रही है और वेलकम बैक कहेंगे अभी हम उन्हें जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग जी। जब हम छोटे थे और चलना सीख रहे थे तो न जाने कितनी बार गिरे, पर क्या तब हमने चलना छोड़ दिया? शायद नहीं। तभी तो आज हम कितनी बेहतरी से चल पाते हैं, भाग पाते हैं, दौड़ पाते हैं। तो फिर बड़े होकर एक असफलता या एक फेलियर या एक झटका हमें आगे बढ़ने से क्यों रोक देता है? फेलियर्स जिंदगी का एंड नहीं होते, वो तो इस बात का सबूत है कि आपने एटलीस्ट कोशिश तो की। गिरना कोई शर्म की बात नहीं है और ना ही गिरकर उठना हार है, बल्कि गिरकर उठना और उठकर दौड़ना, इसी का नाम जिंदगी है। तो बस मन में अपने पुराने हौसलों को जगाइए और एक्साइटेड होकर इस गाने को एंजॉय कीजिए। मेरे साथ सुनते रहिए ठापंस, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

जिंदगी में हर चीज का एक सही वक्त होता है। पौधे में बीज बोते ही फल नहीं आ जाता, उसे पानी देना पड़ता है, धूप देनी पड़ती है और सब्र करना पड़ता है। आजकल हम सब इंस्टेंट दुनिया में जी रहे हैं, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट मैसेज और इंस्टेंट सक्सेस। पर जो चीज जितनी जल्दी मिलती है उतनी ही जल्दी ढल भी जाती है। जो पक्का फल होता है ना, वो पकने में वक्त लेता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि पेशेंस तो वक्त पर यकीन रखने का नजरिया है। और इसी वक्त को और इस नजरिए को आइए जीते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। हमारे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर।

इट हैपेंस। जी हाँ, रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर इसी शो को आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं। बॉस क्या चाहता है, दोस्त क्या सोचेंगे, परिवार की फैमिली की हमसे क्या उम्मीदें हैं, पर कभी शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर आपने पूछा है कि तुम कैसे हो, तुम क्या चाहते हो? अगर आप खुद से ही अनजान हैं तो दुनिया को क्या जान पाएंगे? इसलिए आज जब आप रात में सोने जाएं तो सोने से पहले 5 मिनट खुद से बात करिए। कोई मुखौटा मत पहनिए, बस जैसे हैं वैसे ही रहिए और सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ड ऑन ट्रस्ट।
2: दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वो भी क्या दिन थे, ये वो जुमला है जो हम सबने न जाने कितनी बार बोला है। यू नो, अतीत हमेशा हमें खूबसूरत लगता है क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें आगे क्या हुआ था। वहाँ कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, लेकिन अतीत की यादों के उस मीठे प्रेम में कैद होकर हम अपने आज को देखना भूल जाते हैं। जो आज आपके हाथ में है, 5 साल बाद यही आपका बीता हुआ सुनहरा कल बन जाएगा। तो क्यों ना आज ही इस पल को उतना ही हसीन बना लिया जाए कि फ्यूचर में जब पीछे मुड़कर इसे देखिए तो मलाल ना रहे। अतीत की यादों को सिर्फ एक अच्छी मुस्कान दीजिए, लेकिन पूरी जिंदगी को इसी पल में आपको जीना है। ठीक है जी, ख्याल रखिए और सुनते रहिए ठापंस आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ।

0: वेल, ये था आज इट हैपेंस पर इस मॉर्निंग मेरा आपके साथ एक और बेहतरीन और प्यारा सा साथ। कल कुछ नए जज्बात नई मॉर्निंग के साथ फिर से मिलेंगे आपसे आपके अपनी रेडियो ब्रिस्वानी पर। आज अब इस सफर से लूंगी इजाजत। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।
1: हाय।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: बिजली का बिल देख कर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au। आशिकां

हेलो वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। हां तुसी बने होए हो जी तुहाडे अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101 ते जी आज जी संदेश शोलक दे नाल सी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की गाणा है, तुसी जुड़ना साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रसानी 101 साडा फेसबुक पेज है जी, ब्रसानी ब्रसानी .com साडी ईमेल आई डी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी ओह अपनाओ, पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो क्योंकि सानूं चंगा लगदा तुहाडे गल्लां बातां करनियां। तां चको तुसीं अपना फोन ते साडे नाल गल्लां बातां करो, है ना। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। ते मैं तां आउनी आं, बस हुणे आउनी आं वापिस। उहनां समां तुसीं सुणे जी गीतां नूं इंजॉय भी करो।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 एम ते जी। आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ सालों विच खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मा ने अंतरराष्ट्रीय मंचा ते भारत का नाम रोशन किया है। BFTA कांस वेनिस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन विच भारतीय फिल्मा ने अपनी स्टोरी टैलिंग अते संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित किया है। तो मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसा जिन्होंने विदेश विच वाही वटोरी हैगी है। शायद बहुत बारे तो थोनू पता होना, बहुत बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज है। तो अदर लैंग्वेज जी आती हैगी है तो उस बारे सानू शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं होंगे। तो चलो मैं तुम दसदी हाँ, जे थोनू समझ आती हुई तो जरूर देखियो क्योंकि फिल्मों बहुत ज्यादा वधिया है।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते जी आर जे संदेश चौलक दे नाल बने हुए हूँ। इन्हां फिल्मां दे विचों जिहड़ियां पूरी दुनिया दे विच छाइयां हुई ने, तो यह जिहड़ी लिस्ट मैं फरोल रही हूँ तो इस विच सब तो पहला नाम जिहड़ा आउंदा है वह हैगा बूंग। जी हाँ, यह लक्ष्मी प्रिया देवी दे निर्देशन विच बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंग। फिल्म का नाम ते बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 विच बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर ते रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश विच निकलता। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतीआं नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है जो बहुत वधिया लगती है, क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी है कि ना वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

हाँ जी तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी वंसर वाले ते जी आप चाहे संदेश अलग दिन तुसी बने हुए। अगला नाम इस लिस्ट विच जिहड़ा हैगा है वह हैगा जी होमबॉर्न दा। नीरज गायवान वालों निर्देशित फिल्म ईशान खट्ट विशाल जेठवा जानवी कपूर दी है की है। तीनों इस लीड फिल्म दे विच लीड रोल दे विच ते मार्टिन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है ने इसे। ये ना बचपन के दो दोस्तां जिन्हां दे विचों एक मुस्लिम हैगा ते एक दलित समुदाय दे नाल हैगा है तां उन्हां दी दोस्ती साहत ते जाति राजनीति की कहानी हैगी है। ये भारत की अधिकारित एंट्री सीगी 88वें ऑस्कर दे लई बेस्ट इंटरनेशनल फीचर दे विच शॉर्टलिस्ट हुई पर नॉमीनेशन नहीं मिलिया। ये धर्मा प्रोडक्शन वालों बनाई गई हैगी है ते 26 सितंबर नू रिलीज हुई सी।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ तां जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड्ड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलो अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: एक दो गल्ला करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां तो तुहानूं दसणियां मेरा फर्ज़ है।

जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 FM ते जी आर जी संदेश शौलक दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म जड़ी हैगी है उसका नाम है जी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। पायल कपाड़िया की फिल्म हैगी है ते फिल्म 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल विच ग्रैंड पिक्स जीती सी। कैन फिल्म फेस्टिवल दे विच कानी कुश्रुति अते दिव्या प्रभा इस विच लीड रोल दे विच है ते मुंबई दिया दो नर्सां दी इमोशनल यात्रा दिखाउंदी है कि है। गोल्डन ग्लोब विच दो नॉमिनेशन बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म ते बेस्ट डायरेक्टर ते गोथम अवार्ड्स NYFCCA LA शिकागो आदि तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर अवार्ड जीते ने। बाराक ओबामा ने इस 2024 दी टॉप फिल्म चुनिया सीगा।

0: मौजूद हैं। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132268 उत्ते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वाले एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिनाल से बने हुए हो। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। वो फिल्म का नाम है मसान, नीरज घायवान दी डेब्यू फिल्म। वाराणसी विच दो कहानियां, देवी जिस जो रिचा चड्डा बने सी ते दीपक जो विकी कौशल बने सी दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रॉमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उथे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्डा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: ते हाँ हीरो की तरह भाई।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म है कि ऑल दैट ब्रीथ्स। ए नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है, बट नो नो नो नो नो नो, ए हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। ऑल दैट ब्रीथ्स ए इंडियन मूवी है कि है। शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री हैगी है। 2023 ऑस्कर दे लई नॉमीनेट हुई सी। 90 मिनट की यह फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलन बचाते हैं। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड ते संडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड ज्यूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिले है।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट विरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
4: ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਰੱਖ।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Ke aalam mein nasha ho jab tere ruksaar dekhoon. Khuda ne jab tarasha hoga wo asrar dekhoon. Nigahon mein basa hai is qadar ye noor tera. कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: जी देखो, वेला तो हो चुकिया है थोड़े तो इजाजत लैण दा, पर जाण तों पहलां थोड़नूं कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी सी, तां मैं सोचा वी दस दिंदी हां। तां उस फिल्म दा नाम है जी डिसिपलिन। जी है चैतन्य वलों निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दी दुनिया ते आधारित हैगी है। फिल्म नूं वेनिस फिल्म फैसटिवल विच FIPRESCI अवार्ड मिलिया हैगा, ते अल्फोंसो कोरान हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इस दे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से। फिल्म एक संगीत साधक दी कलात्मक पूर्णता की तलाश है, आधुनिक दुनिया नाल टकरा दी कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर या करो तुम साढ़े। रेडियो बरसोनी 101.1 FM साढ़ फेसबुक पेज है जी, बरसोनी@बरसोनी.com साड़ी ईमेल आई डी है, जरिए जेड़ा भी तुम अपना चाहते हो अपना लो, पर साढ़े गल्लां जरूर करो, है ना। ते बाकी मैं तो यही कहना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करो। सत श्रीकाल।
1: What does this fight mean to you to defend your title tomorrow night again?
2: I'm gonna smash your boy. Tomorrow night, I'm gonna smash your

0: stop renting and thinking about owning one. Or maybe an investor looking to invest. Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: And you are listening to Radio Briswani. Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. And you
3: are listening to Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: And you are listening to Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. And you are listening to Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-381।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों अलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierticket.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल।
2: बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम निव्या के साथ। सबसे पहले आप गरम चीज और बहुत, अब आपको तो पता ही है कि प्रोग्राम जो है वो मजेदार है, प्रोग्राम है वो मजेदार बातों से गपशप से भरपूर है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से ट्यून इन कर लीजिए, क्योंकि ये है इवनिंग वाइब और ये है रेडियो ब्रिस्वानी। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। वेल ऑफ कोर्स इवनिंग वाइब शुरू हो गया है, घंटे के लिए हम आपको ऐसी राइड पर लेकर जाएं आपको अच्छा फील करवाने वाली, एंड व्हेन आई से अच्छा आई मीन इट फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ माय हार्ट। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम, और सबसे पहले वो चीज करते हैं जो कि हमें प्रिपेयर करती है अच्छी शुरुआत के लिए, रिचुअल एक्सरसाइज का वो रिचुअल जो हम प्रैक्टिस करते हैं अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में। और ये सिर्फ प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही नहीं होना चाहिए, अगर आप किसी भी चीज की शुरुआत कर रहे हो, आपको थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा सा भी ऐसा उलझा सा फील हो रहा है, तो ट्राई कीजिए, यू आर गना फील बेटर। जी हाँ, सो सबसे पहले आइए फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और इसी के साथ अब जरा शुरुआत होगी एक बढ़िया से गाने के साथ। और ये बढ़िया सा गाना है फ्रॉम द मूवी हैवान, जो कि है रंगियारा। लगता मुझे इससे ज्यादा गाने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं गाना चाहूं भी तो भी आप लोग मुझे गाने नहीं दोगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं प्रोग्राम को इस जबरदस्त से गाने।

एरा में फिर से क्यों जा रहे हैं जी? हाँ, मतलब ये गाने धुरंधर सिर्फ मूवी ही खतरनाक नहीं है, उसके गाने भी उतने ही खतरनाक। लाजवाब है। आज भी याद है जब धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हुआ था पहली बार, और वो इसी वक्त यानी कि 2024 में इसी वक्त अक्टूबर में ही उसके टीजर को रिलीज किया गया था। एंड क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अच्छा से बनता है ट्रेलर, एंड इनफैक्ट पीपल वर सो ब्लंट एंड ब्रूटल दैट दे वर टॉकिंग अबाउट मेनी डायरेक्टर्स, और वो कह रहे थे और दे वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मेनी डायरेक्टर्स कि ट्रेलर ऐसा बनता है, मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेलर में आधी मूवी दिखा दो और फिर हमको बोलो कि अब तुम थिएटर्स में आके भी मूवी देखो। सो ट्रेलर बनाने का गानों की बात तो आपको पता ही है, मतलब क्या क्या नहीं मिला आपको, वो जो पुराने पंजाबी गानों से लेके वो जो नया एलिमेंट और वो सारा का। तो ये गाना जो है वो जबरदस्त है, और ये गाना जो है वो धुरंधर का है और द रिवेंज का है। ये धुरंधर 2 का गाना है, वो धुरंधर का गाना था जो अगेन जबरदस्त था। सो धुरंधर के गाने, धुरंधर का ट्रेलर और धुरंधर इटसेल्फ, हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा बात हुई है। इसी के साथ अब जरा बात करते हैं मौसम के बारे में। दोस्तों मौसम कह रहा है कि 29 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, अभी की अगर बात की जाए तो 26 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको रात की बात की जाए तो 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के रहने के चांसेस हैं। 50% चांसेस बारिश के, जो कि 1 mm तक होने के चांसेस है। अगेन मुझे ये बारिश होती हुई नजर आ रही है 6 बजे तक, उसके बाद जो है वो मुझे आसमान क्लियर नजर आ रहा है, बट अगेन 6 बजे तक भी वो कुछ ही क्वालिटी है एकदम फेयर। और वहीं अगर बात की जाए वेडनेसडे की, यानी कि कल की और थर्सडे की, तो वेडनेसडे को 28 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 40% चांसेस है बारिश होने के, ऑल्दो 1 to 5 mm बारिश जो है वो होती हुई यहां पर नजर आ रही है मुझे। बट इसमें क्या है, मौसम है, अपनी अदा से चलता है अपनी अंग। थर्सडे की अगर बात की जाए तो 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 10% चांसेस, मतलब बादल हैं बट बारिश मुझे इतनी नजर नहीं आ रही है। 10% बहुत ही थोड़े चांसेस होते हैं और उसमें भी फेरबदल हो सकता है। सो या ये है मौसम का हाल। चलिए इसी के साथ आगे आपको थोड़ी सी चूड़ियां खनकाने के लिए ले चलते हैं। आप लोग बोलोगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, खासकर मेरे मेल लिस्ट बोलती हूँ। चलिए ठीक है,

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज शेन इविया के साथ। दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है, मौसम के बारे में आपको बता दिया गया है, तो अब जरा चलते हैं सीधा उस और जहां का आपको भी इंतजार था और हमें तो हमेशा रहता ही है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट आपकी फरमाइश है, आपके रिकमेंडेड सॉन्ग्स, आपके वो डेडिकेटेड सॉन्ग्स जो कि आप करते हो डेडिकेट अपने नियर एंड डियर वंस को और हमें भी और हमारे रेडियो ब्रिस्बेनी को भी हिस्सा बनाते हो अपने उन पलों में। सो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि मैं एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रही हूँ। वेल, मैं बात कर रही हूँ उस बारे में जो कि बहुत ही खास बनाता है हमारे प्रोग्राम को, विच इज योर फेवरेट फरमाइशी सॉन्ग्स। मतलब हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ हम ही आपके लिए गाने प्ले नहीं करते हैं, बल्कि आप भी अपने पसंदीदा गाने प्ले करवा सकते हो और साथ में किसी को डेडिकेट कर उन्हें स्पेशल भी फील करवा सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज डायल अ नंबर, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक और बढ़िया सा गाना, और ये गाना ना आपको बहुत कुछ सिखाएगा। क्यों सुनिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा।

जी दोस्तों, इसी के साथ हम जरा बात कर लेते हैं एंथ्रोपिक के बारे में, क्योंकि लिटरली कंपनी लिस्ट होने वाली है और वो लिटरली आय कर रही है 2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन को। जी हाँ, आपने सही सुना। और जो मार्केट को पसंद करते हैं लोग, मार्केट से रिलेटेड चीजों के बारे में सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए बड़ी बात है, क्योंकि एंथ्रोपिक का IPO जल्द ही आने वाला है। 2 ट्रिलियन वैल्यूएशन के लिए होप कर रही है यहां पर कंपनी। और ऐसा कहा जा रहा है कि एंथ्रोपिक का जो फायदा है, मुनाफा है, जो रेवेन्यू है, वो 12-fold जो है वो बढ़ गया था 2025 में। जी हाँ, $4.6 बिलियन के करीब जो है वो रेवेन्यू 2025 में ही एंथ्रोपिक ने करके दिखाया है। और ये प्लान कर रही है कंपनी कि $518 बिलियन वो और इन्वेस्ट करना चाहती है ऑन कंप्यूटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कमिंग ईयर्स। एंड फॉर दैट इट नीड्स फंड, एंड फंड्स के लिए जल्द ही मार्केट में भी उतर रही है एंथ्रोपिक। और आपको तो पता ही है, जब भी कोई बड़ी कंपनी, खासकर कोई भी AI कंपनी जो है वो आने वाली होती है, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमारा तो विवाद जो है वो एकदम सुलझ गया है, थोड़े दिनों में हम दोस्त बनने वाले हैं। जी हाँ, मतलब ईरान के साथ। क्योंकि जब भी उनकी कोई भी बड़ी कंपनी पब्लिक होने वाली होती है, लिस्ट होने वाली होती है, तो ऐसे में उस पर अच्छा असर रहे, कोई बुरा असर ना हो वॉर की वजह से जो कि उन्होंने ईरान के साथ शुरू कर दी है, तो वो उसको गुमराह करने के लिए और लोगों में ये दिखाने के लिए कि अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, सो यू कैन लिटरली इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। Although Anthropic is a very powerful company when it comes to AI, Anthropic is better than ChatGPT in many ways. जी हाँ, जब भी बात होती है बड़ी कंपनीज की जो अच्छे से जो है, अच्छे के साथ साथ जो है सिक्योर फॉर्मूला चाहते हैं, सिक्योर पाथ चाहते हैं AI यूजर्स के लिए, तो Anthropic provides that. Rather than ChatGPT, it is way better. But of course, अगर हम बात करें कि जो जनरल यूज और जितने ज्यादा अगर यूजर्स की बात करें, तो दे आर स्टिल ChatGPT यूजर्स। जी हाँ, बट यहाँ पर अगेन एंथ्रोपिक जो है वो आपको बहुत ज्यादा सही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है व्हेन इट कम्स टू AI यूजर्स, और इसीलिए बड़ी कंपनीज जो है इसके कॉस्टली होने के बावजूद भी इसे ही यूज करती है। नाउ कंपनी जो है वो लिस्ट होने वाली है और जल्द ही $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के लिए वो होप कर रहे हैं। और ये कंपटीशन जो है वो कम नहीं है, क्योंकि ओपन AI के साथ कंपीट कर रही है वो इसी वक्त। और साथ में इट ऑल्सो फेसेस ग्रोइंग क्वेश्चंस ओवर द सेफ्टी ऑफ इंक्रीजिंगली पावरफुल AI सिस्टम। सो बी इट ChatGPT, बी इट Anthropic, क्वेश्चन सबसे पहला यही आ जाता है कि आपका AI पावरफुल तो है, लेकिन आपका वो पावरफुल AI कहीं ह्यूमन लिमिटेशंस को क्रॉस ना कर जाए, एंड दैट इज नॉट समथिंग वी वांट टू सी। सो या, दैट्स द क्वेश्चन। अगेन 2 ट्रिलियन वैल्यूएशन इट कैन गेट, आई थिंक ये कहीं ना कहीं इतने तक पहुंच सकता है, एंड लेट्स सी। बट या, Anthropic का IPO जो भी इंतजार कर रहे हैं, जरा आप इस पर नजर बना के रखिए, क्योंकि जल्द ही ये आने वाला है। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

0: ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
1: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
2: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲਾਇਰ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਮਾਈ ਕੇਸ।
1: ਗੋ ਫਾਰ ਦ ਬੈਸਟ ਵੀਰੇ, ਅਤੁਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਰੱਗ ਓਫੈਂਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੈਟ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਐਂਡ ਵਰਕ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਟ।
2: ਥੈਂਕਸ ਤਨਵੀਰੇ, I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
4: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
6: Hi, this is Amitabh Bachchan.
7: And you are listening to Radio Briswani. Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers.
8: And you are listening to Radio Briswani.
9: Hi, this is Salman Khan. And
10: you are listening to Radio Briswani.
11: Hi, this is Deepika Padukone. And you are listening to Radio Briswani.
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
13: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
14: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
15: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
16: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
17: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ रशिया से कोई अच्छी खबर नहीं आई है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि रशिया से अच्छी खबर आती कब है। वेल, मैं इतना कहूंगी कि एज कम्पेयर टू अमेरिका रशिया स्टिल बेटर, मतलब रशिया अभी हमें फिर भी बेटर लगेगा क्योंकि अमेरिका के जो मिस्टर प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। वेल, वी आर नॉट गोना गो टू दैट डायरेक्शन। वी आर गोना टॉक अबाउट अ प्लेग। जी हाँ, सो बेसिकली इस प्लेग की शुरुआत होती है एक लैब से जहां पर एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया और इन्फेक्शन की टेस्टिंग हो रही थी और जो टेस्ट उसे कर रही थी ऑफकोर्स जो डॉक्टर या जो भी वो लैब टेक्नीशियन थी वो गलती से उस ट्यूब को गिरा देती है जिसमें वो बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होती है और वो गिर के टूट जाता है और वो नीचे स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद की कहानी ये थी कि उसके बाद वो टेक्नीशियन जो है वो खुद बीमार हो जाती है, उसे बहुत सारी चीजें होती हैं, उसे सांस नहीं आता है, उसे वेंटिलेटर पे रखा जाता है और फाइनली वो अपनी आखिरी सांस लेती है। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। वेल, जो इन्फेक्शन पर्टिकुलर बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन वो टेस्ट कर रहे थे वो प्लेग से रिलेटेड था और वो ट्यूब जब गिरी तो वही बैक्टीरिया वही इन्फेक्शन का जो सारा का सारा सिचुएशन थी वो उसके साथ नीचे गिर गई, टूट गई और उसकी वजह से वहां पर काम करने वाले 200 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया। जी हाँ, आप लोग बोलो कि ओ माय गॉड, लाइक वी आर नॉट रेडी फॉर एनी अदर पेंडेमिक और ऐसा कुछ और हमें नहीं चाहिए। जी हाँ, ये तो चलो एक चीज है, ऐसा ही कुछ मतलब नॉट एग्जैक्टली ऐसा बट न्यूयॉर्क से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है क्योंकि न्यूयॉर्क में मीजल आउटब्रेक हुआ है। जी हाँ, और वो मीजल आउटब्रेक बहुत ज्यादा सीरियस है क्योंकि ऑलमोस्ट 3500 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त इससे गुजर रहे हैं और इसके पीछे रीजन अपेरेंटली ये बताया गया कि पहले जब मीजल्स होते थे उसके बाद लोगों को वैक्सीनेट किया गया और लोगों को लगा कि वैक्सीनेशन के बाद वो ठीक हो गए, तो उनको लगा कि जो लोग वैक्सीनेशन के बाद ठीक हुए हैं तो शायद हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। बाद में लोगों ने वैक्सीनेशन लेनी बंद कर दी और इसके और उसका खामियाजा ये है कि उसका आउटब्रेक हो गया। पिछले 2 सालों से ये बढ़ता ही जा रहा है लेकिन इस बार फाइनली ये ज्यादा ही बढ़ गया है और न्यूयॉर्क में लिटरली इसे सबसे ऊपर इमरजेंसी वाली चीजों में रखा गया है। सो ये तो एक चीज है बट रशिया वाली चीज कंसर्निंग है। अगर वो प्लेग वाला इन्फेक्शन या बैक्टीरिया जो भी वो टेस्ट कर रहे थे अगर उसकी वजह से वो 200 लोग भी बीमार पड़ते हैं तो क्या वो आइसोलेशन तक ही खत्म होगा? Well, we don't know, but इतनी तो पक्की बात है कि इस दुनिया में इंसान जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी है। मतलब क्या जरूरत है ये सब टेस्ट करने की? प्लेग को हमने पीछे छोड़ दिया तो उसको छोड़ दो ना पीछे, अब उसको और आगे टेस्ट करके। और भाई मतलब कोई गिरा कैसे सकता है? Well, of course, उस लड़की ने जानबूझ के नहीं गिराया, उस टेक्नीशियन ने जानबूझ के नहीं गिराया, बट अगर उसकी वजह से गड़बड़ होती है तो आप सोचिए कितनी गड़बड़ हो सकती है। डू वी नीड एनी अनदर पेंडेमिक? नो वी डोंट नीड, बट क्या लोग सुधरेंगे? वेल, वो भी मुझे नहीं पता। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: भारत का ही है, यानी कि इंडिया का है, और एक लिकर शॉप का है. नाउ वी ऑलवेज से, हम हमेशा आपको कहते हैं कि लिकर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड यू शुड नॉट कंज्यूम इट, और लिकर जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है. और मैं हमेशा अपने लिसनर्स को कहती हूँ कि जितना आप दूर रह सकते हो इससे उतना ही बढ़िया है आपके शरीर के लिए. लेकिन यहां पर मैं आपको इस किस्से के बारे में सुनाने वाली हूँ. सो होता यह है कि एक बंदर, जी हाँ, एक बंदर जो है एक लिकर शॉप में घुस जाता है और बड़े ही मजे से खाने की चीजें नहीं ढूंढता है, और खाने के बजाय वो एक लिकर की बॉटल को खोलता है और उसे गटक गटक पीना शुरू कर देता है. जी हाँ, अब लोग जो है, पहले वो देखते नहीं है, लेकिन जब लोग देखते हैं तो वो लगा हुआ होता है, गटक गटक पी रहा होता है, और फिर लोग जो है उससे डरते भी हैं, तो वो उसको भगाने की कोशिश नहीं करते वहां से. लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद फिर से आते हैं तो वो बंदर पी के एकदम सोया हुआ होता है. आप लोग बोलोगे कि यहाँ इंसान तो इंसान उल्टे रास्ते पर जाता ही है, लेकिन यहाँ बंदर भी उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं. मतलब इनको भी समझ नहीं है कि ये चीज खतरनाक है. अरे तुम केला खाओ, सेब खाओ, और तो और किसी जगह रेस्टोरेंट में घुस जाओ, वो समझ आता है. लिकर शॉप में घुस के लिकर की बॉटल खोल के लिकर कंज्यूम करना, ओ ओ ओ ओ. अब बात यह है ना कि इंसानी लैंग्वेज में तो हम लोगों को समझा देते कि लिकर इज बैड फॉर हेल्थ, पर मुझे नहीं समझ आया कि यहां पर बंदर को समझाना है तो बंदरों वाली लैंग्वेज में कैसे समझाया जाए. आई मीन देयर इज नो लैंग्वेज फॉर इट. सो ऑफ कोर्स वो लोग जो है इस पूरे के पूरे वाक्यों को रिकॉर्ड कर रहे थे कि बंदर बड़े स्टाइल से आता है, बॉटल खोलता है, इजी लाइक यू नो व्हाट, टुडे आई एम गोना डू पार्टी. पार्टी गलत है वो पार्टी. अब मेरे सामने वो बंदर आए ना तो मैं उसको भी समझाऊं कि नहीं नहीं बेटा, ये बिल्कुल नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज सो रॉन्ग. पर इंसान तो इंसान, बंदर भी उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं. मैं तो ये सोच रही हूँ जी, यहाँ पर ये किस्सा जो है वो बहुत सारे व्यूज जो है उसे मिल रहे हैं, एंड पीपल आर लाइक बंदर भी एकदम हेवन की सैर करने के लिए चले हैं. जी हाँ, पीपल आर लाइक दैट, दे आर कमेंटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ कमेंट्स ऑन दैट वायरल पोस्ट. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है.
1: Pump it up.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 p.m. एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
4: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
5: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक, और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। तो दोस्तों, हनुमान अंश के बारे में बात कर लेते हैं फिर से, और आप लोग भूलोगे कि निव्या शर्मा, तुमको हनुमान अंश मूवी से बहुत ज्यादा प्यार है शायद। वेल, प्यार मुझे नहीं है, प्यार ऑडियंस को है, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने हनुमान अंश देख ली? जी हाँ, अब हनुमान अंश में जितने भी गाने हैं वो सब जो है वो लोकल लोकगीत गाने वाले जो सिंगर्स थे उनसे गवाए गए हैं, क्योंकि इस मूवी का बजट इतना था नहीं। जी हाँ, इनफैक्ट इसमें जो एक्टर हैं वो भी बैक स्टेज काम किया करते थे, बिहाइंड द सीन काम किया करते थे असिस्टेंट के तौर पर, और उनको एक्टर बनाया गया। जो प्रोड्यूसर हैं वो पहली बार प्रोड्यूसर बनी, अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स उन्होंने इस मूवी में झोंक दी। स्टार्टिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे धीरे ये मूवी बॉलीवुड का और मूवी इंडस्ट्री का डार्क हॉर्स बन के निकली। जी हाँ, नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट हनुमान अंश अगेन? वेल, बिकॉज ऑफ कोर्स उसकी कलेक्शन जो है वो 400 करोड़ के करीब पहुंच गई है, और यहां पर जो चीज सबसे ज्यादा मजेदार है वो ये है कि मूवी तो मूवी है, लेकिन इसके गाने भी अपने आप में नया कारनामा करके दिखा रहे हैं। सो इसका एक गाना है जिसका नाम है पार्वती। जी हाँ, सो हनुमान अंश का जो पार्वती गाना है वो नंबर 1 जो है वो ट्रेंड कर रहा है इंडिया में तो, लेकिन ग्लोबल भी। जी हाँ, यूट्यूब के ग्लोबल चार्ट्स पे नंबर 2, मतलब नॉट ओनली इन इंडिया बट पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर लिटरली वाइबिंग ऑन दिस सॉन्ग। जी हाँ, और इनफैक्ट शकीरा का जो दाए दाए है उसके बिल्कुल एक कदम पीछे ही है ये गाना। अब आप सोचिए, शकीरा इज अ ग्लोबल सुपरस्टार, शी इज अ ग्लोबल सिंगर, राइट? और उनके गाने जो है वो हमेशा वैसे ही ट्रेंड करते हैं, लेकिन पार्वती जो कि एक छोटे से बजट वाली मूवी जिसको लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया, उसके गानों को भी इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि वो अलग रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई है. जी हाँ, और अगेन ये गाना जो है वो बहुत ही ज्यादा खास है. एंड इनफैक्ट ये गाना हमने अभी तक अपने इस प्रोग्राम में प्ले नहीं किया है. एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने से अभी तक सुन लिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं सुना है तो बहुत ही प्यारा सा टेक ऑन है ये पार्वती माता और महादेव के बहुत ही छोटी और प्यारी सी नोक झोंक के बारे में. सो आइए सुनते हैं इसके बारे में, और ये गाना भी आप मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी.

0: मिलता है आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर?
1: ये भक्ति करनी है ना तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: जी दोस्तों, इसी के साथ अब सीधा चलते हैं खबरों की दुनिया की तरफ, रुख करते हैं। जी हाँ, खबरों में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, आइए जरा आपको वही बताते हैं। सबसे पहले भारत से खबर है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल निकाल रहे हैं मार्च, और उसमें कॉकरोच जनता पार्टी का भी योगदान है, ऐसा कहा जा रहा है। जी हाँ, सो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च कर रहे हैं। ये मार्च पार्लियामेंट हाउस से लेकर चुनाव आयोग के मुख्यालय तक होना है। कांग्रेस ने सोमवार को ही अपनी तीन मांगे सामने रखी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा था कि कांग्रेस पार्टी की तीन मांगे नॉन निगोशिएबल है। पहली, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा। दूसरी, एसआईआर को रद्द करना। तीसरी, बेल्ट पेपर पर चुनाव कराना। जी हां, कांग्रेस के मार्च के दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, और वहां पर इसमें कोई भी ज्यादा विवाद ना हो उसके लिए वहां पर सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। जी हाँ, वहीं आम आदमी पार्टी का दावा कि 10 अक्टूबर को पहले इस्तीफा दे सकते हैं ज्ञानेश कुमार। जी हाँ, सो यहाँ पर आम आदमी की तरफ से भी कहा गया है कि 10 अक्टूबर से पहले चुनाव आयोग मुख्य ज्ञानेश कुमार जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि अपेरेंटली उन पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी को चुनाव जिताने में हेल्प की है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहां पर इस्तीफे की मांग जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, और इसके बारे में कॉकरोच जनता पार्टी ने भी यहां पर उनके इस्तीफे की मांग की है और धमकी दी है कि अगर इस्तीफा नहीं मिला तो वो फिर से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, जस्ट लाइक द जेंजी प्रोटेस्ट दे डिड कुछ दिन पहले। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है।

जी हाँ दोस्तों, वही खबरों की बात हो रही है और जरा चलते हैं यमन की तरफ। यमन में संघर्ष में तेजी, सरकारी बलों ने अहम इलाकों पर नियंत्रण का किया ऐलान। जी हाँ, सऊदी अरब समर्थित यमनी सरकारी बलों ने ताइज प्रांत में बढ़त बनाने का दावा करते हुए मोचा शहर पर अपना कंट्रोल होने की घोषणा की है। सुरक्षा बलों के मुताबिक बाब अल मंदब स्ट्रेट के पास भी कई अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया है। इस बीच हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के भीतर कई ठिकानों को निशाना बनाकर नए हमले करने का दावा भी किया है। जी हाँ, बीबीसी न्यूज अरबी के अनुसार ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब सऊदी के नेतृत्व वाला गठबंधन हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले तेज कर रहा है। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हाल ही में यमन डॉन नाम से बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद सरकारी संस्थानों को फिर से स्थापित करना, हूतियों के हाल में कब्जे के लिए गए इलाकों को वापस लेना और हूती विद्रोह को समाप्त करना है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने भी इस सैन्य अभियान में शामिल होने की घोषणा की है। गठबंधन ने सोमवार को हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए। गठबंधन के प्रवक्ता के अनुसार इन हमलों में करीब 100 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया और हूतियों के 324 ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं ताइज प्रांत और उसके आसपास जारी संघर्ष में पिछले 24 घंटों के दौरान 70 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों के स्रोतों ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
6: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
6: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381-360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
7: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111-27035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111-27035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111-27035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और मिस्टर ट्रंप ने भी कुछ कहा है, तो आइए जरा जान लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। बहुत ज्यादा टाइम तो गड़बड़ी कहते हैं, बट चलिए ठीक है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया अमेरिका ने ब्रिटेन के एयरबेस से क्यों हटाए सारे लड़ाकू विमान। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन स्थित आरएफ फेयरफोर्ड एयरबेस से अमेरिकी बॉम्बर को कुछ खतरों को चलते हटाया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने रविवार को ही पुष्टि की थी कि ब्रिटेन के एयरबेस पर तैनात अमेरिकी लड़ाकू विमानों को वापस अपने ठिकानों पर भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि इनमें करीब एक दर्जन B-1 बॉम्बर शामिल थे। सोमवार को नेब्रास्का रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को एयरबेस को लेकर एक खतरे की जानकारी मिली थी, इसी के बाद वहां तैनात बॉम्बर को हटाने का फैसला लिया गया। जी हाँ, ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या किसी खास खतरे के चलते विमानों को फेयरफोर्ड से हटाया गया, तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे लगता है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वे वहां से यूं ही नहीं उड़े थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ धमकियां थी और दुश्मन को उकसाने के बजाय हम दुश्मन को पकड़ेंगे और उसे हराएंगे। ट्रंप के मुताबिक बॉम्बर को बहुत दूर नहीं ले जाया गया है, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका को उस खतरे के पीछे मौजूद लोगों के बारे में जानकारी है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि इसके पीछे कौन लोग हैं। जी हाँ, अब ऐसे में ट्रंप को तो सब कुछ ही पता है, सो चलिए हमें भी पता है उनको कितना पता है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कुछ अजीबो गरीब हो रहा है, लेकिन एक ऐसी चोरी जो कि लिटरली अजूबों का ताज अपने सर पर पहनने के लिए तैयार है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो एनविडिया के बारे में हमने सुना ही है, वो जीपीयूज बनाती है, वो ऐसी चिप्स बनाती है जो कि बेसिकली हर किसी को चाहिए, लिटरली हर किसी को। लाइक इफ यू वॉन्ट टू मेक ईवीज, यू वॉन्ट दैट, जी हाँ, ईवी कार्स के लिए, वेपन्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, सब चीजों के लिए हमें चिप्स चाहिए, और वो बनाती है एनविडिया। एंड एनविडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जो कि सप्लाई करती है वो चिप्स। नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट एनविडिया? वेल ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग एनविडिया अबाउट एनविडिया बिकॉज एनविडिया से रिलेटेड ही एक चोरी हुई, लेकिन चोरों को अलग ही सरप्राइज मिल गया। मतलब एनविडिया के ट्रक एनविडिया और प्लस एआई है, और प्लस एआई जो है एनविडिया उसके साथ मिलकर काम करता है प्लस एआई के साथ, और प्लस एआई एक ऐसी कंपनी है जिसके सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स हैं अपेरेंटली। जी हाँ, सो चोरों ने प्लस एआई के ट्रक्स को देखा, एनविडिया के ट्रक्स को देखा, और उन्हें लगा कि ये ट्रक जो है इनमें जीपीयूज भरे हुए हैं, और अगर हम उन जीपीयूज को लूट लेंगे तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, मतलब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। बट टर्न्स आउट जब वो उसे लेकर जाते हैं, उन ट्रक्स को वो ले जाते हैं अपने साथ, और जब वो देखते हैं तो उसमें उन्हें जीपीयूज नहीं मिलते बल्कि उन्हें मिलती है रेत, लाइक सैंड, 20 टन्स ऑफ सैंड, मतलब 20 टन्स भी आई थिंक मैं कम बोल रही हूं, इससे कहीं ज्यादा रेत उन्हें मिलती है। सो वो जो ट्रक्स थे जिनमें चोरों को लग रहा था कि वो जीपीयू से भरे हुए हैं, वो जीपीयू से भरे नहीं थे बल्कि वो सैंड से भरे हुए थे, और वो हुआ इसलिए क्योंकि प्लस एआई उस वक्त अपने टेस्ट कर रहा था ट्रक्स को। जी हाँ, वो जो ट्रक्स हैं जो खुद अपने आप को ड्राइव करते हैं, सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स हैं, वो एआई के थ्रू चलते हैं। सो उनको जो है वो प्लस एआई टेस्ट कर रहा था, और उस टेस्टिंग के दौरान ही उन्होंने अपने ट्रक्स को खड़ा किया था एक जगह पर, और जब चोरों ने देखा उन ट्रक्स को तो चोरों के दिमाग में ख्याल आया कि अरे वाह, अपनी तो लॉटरी लगने वाली है, लेकिन टर्न्स आउट लॉटरी तो नहीं लगी, उनको अलग ही सरप्राइज मिल गया। सो जब पुलिस उनको खोजने लगी उन ट्रकों को, तो ऑफकोर्स पुलिस उन ट्रकों तक पहुंच गई, उसके बाद ट्रैक डाउन कर लिया गया उन ट्रक्स को, और फिर जब ट्रक्स को खोला गया तो उन्होंने देखा कि उसमें रेत है। फिर पुलिस वालों को समझ आ गया कि अरे अरे अरे, इसीलिए चोर कुछ लेके नहीं भागे, मतलब जो लेके आए थे वो वहीं छोड़ के भाग गए, क्यों, अब रेत तो नहीं लेके जाते ना बोरियों में भर के या झोले में भर के। सो या मतलब चोरी की थी क्या, खतरनाक, सोचा अरे वाह लॉटरी लगने वाली है, लॉटरी तो नहीं, पॉटरी वाले पैसे भी नहीं मिले वहां पे। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनीबैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनीबैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब, और वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। जी हाँ, सो वक्त हो गया है ओल्ड इज गोल्ड का, और उसका मतलब वही है जो आप सोच रहे हो। लेकिन इन केस आप नए हो, आपको नहीं पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, वेल मैं बात कर रही हूँ ऑफकोर्स हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड, जिसमें पुराने गाने हम प्ले करते हैं, पूरी तरह से पुराने किस्से हम आपको सुनाते हैं, और आपकी फरमाइशें भी पुरानी होती हैं जो हम इस सेगमेंट में प्ले करते हैं। आज एक बहुत ही खास व्यक्ति का जन्मदिन भी है। जी हाँ, वो बहुत ही खास शख्सियत थे, बहुत ही हैंडसम थे। जी हाँ, उनके खूबसूरती के बारे में और उनकी खूबसूरती की तारीफ जो है वो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने की है, आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो। उनका जन्मदिन है आज, अगेन जैसे मैंने कहा कि वो है नहीं आज हमारे साथ इस दुनिया में, लेकिन उनकी आर्ट, उनकी खूबसूरती, उनकी शख्सियत और उनकी वो प्यारी और खूबसूरत ह्यूमिलिटी आज भी उनके फैंस में जिंदा है। जी हाँ, सो अगेन किसके बारे में बात कर रही हूँ आपको गेस करना है, और मैं एक गाना प्ले करने वाली हूँ तो शायद आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा। जी हाँ, ये खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने गेस कर ही लिया होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं दी हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम भी अगर हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट विनोद खन्ना जी की. जी हाँ, विनोद खन्ना जी का आज है जन्मदिन. सो ऑफकोर्स आज हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी आर्टिस्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी ह्यूमिलिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं. और जैसे मैंने कहा कि उनकी खूबसूरती के किस्से तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस बताया करती थी, चाहे फिर वो मौसमी चटर्जी हो, फिर चाहे कितनी भी और एक्ट्रेसेस हो, सब ने कहा जब भी उनसे पूछा जाता था, और इनफैक्ट आज भी पूछा जाता है कि हु वॉज द मोस्ट गुड लुकिंग पर्सन यू वर्कड विद और आपके आजू बाजू उस वक्त, एंड दे ऑल वर लाइक यू नो व्हाट, विनोद खन्ना. ही वॉज बियॉन्ड हैंडसम, एंड ऑफकोर्स हैंडसम तो वो थे ही, लेकिन दिल के भी वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे. जी हाँ, अपनी जर्नी उन्होंने, मतलब ही वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो, बिकॉज ही वॉज नॉट जस्ट अ एक्टर. अपनी एक्टिंग को और अपने पीक करियर को छोड़कर वो अध्यात्म की तरफ चले गए. उन्हें लगा कि ये जिंदगी जो है, जो हमें बताई जाती है, जो हमें सिखाई जाती है, वो वैसी नहीं है. क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी जर्नी है, एक हमारी आउटर जर्नी है, एक हमारी इनर जर्नी है, एक हमारा इनर पीस है, और वो भी अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो विनोद खन्ना वॉज अ वेरी वेरी वेरी दिलचस्प पर्सन. जी हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी के फैसले हमेशा अपनी मर्जी से लिए. उन्हें जो जब करना था उन्होंने उसे उसी वक्त बेबाकी से किया. जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है वादा कर ले साजना. और अगेन विनोद खन्ना साहब की बात हो रही है, सो उनका गाना तो बनता है.

जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही आपकी फरमाइशों में भी जादू है। जी हाँ, आपकी फरमाइशें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, और फरमाइश प्ले करने का वक्त भी अब यहाँ पर हो रहा है, जो कि अब हम जल्द ही करने वाले हैं। दोस्तों, इसी के साथ विनोद खन्ना के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनकी खूबसूरती जो है वो उनका सबसे बड़ा USP बनकर सामने आई। जी हाँ, लेकिन उनकी जब अभिनय की बात आई तो उसमें भी उन्होंने सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, ये वो वक्त था जब धर्मेंद्र बहुत बड़े स्टार थे ऑलरेडी, और उस वक्त जो है वो विनोद खन्ना भी जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और ऐसे में उन्होंने कुछ मूवीज ऐसी भी की जहां पर उन्होंने विलन का कैरेक्टर प्ले किया। और ये बहुत ही प्यारा सा किस्सा है, क्योंकि धर्मेंद्र के साथ उनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी थी, और धर्मेंद्र के साथ दोस्ती गहरी थी इसी वजह से धर्मेंद्र के लिए उन्होंने उन्हीं की मूवी में एक नेगेटिव रोल भी किया। जी हाँ, इससे पहले भी वो नेगेटिव रोल कर चुके थे, लोगों ने उनके करियर के, उनके एक्टिंग के डिफरेंट शेड्स भी देखे थे। मतलब एक ऐसा इंसान जो हीरो की तरह एक्टिंग करता है तब भी जबरदस्त लगता है, और एक ऐसा विलन जब वो विलन की तरह एक्ट करता है तब भी अच्छा लगता है। मतलब ये चीज बहुत ही ज्यादा कमांडेबल थी, और दैट वॉज द रीजन कि लोगों को लगा कि विनोद खन्ना जो है अब वो नए सुपरस्टार जो है वो बन गए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपने अध्यात्म के लिए उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया, ये वो वाला वक्त था जैसे मैंने कहा धर्मेंद्र और वो पूरी तरह से उस वक्त राज कर सकते, धर्मेंद्र राज कर रहे थे, लेकिन वो उस चीज से उन्हें वो चीज फील नहीं हुई, उन्हें वो संतुष्टि फील नहीं हुई, वो सक्सेस उन्हें अच्छा तो लग रहा था लेकिन वो संतुष्टि नहीं हुई, और इसीलिए वो आध्यात्मिक गुरु ओशो के पास रहने चले गए। जैसे मैंने कहा कि अध्यात्म के लिए उन्होंने फिल्मी करियर को छोड़ दिया, और उन्होंने कभी भी उस चीज को रिग्रेट नहीं किया। उनके बाद वाले इंटरव्यूज को अगर देखा जाए, उनसे जब भी पूछा गया तो ही वॉज लाइक कि वो मेरी कॉलिंग थी, मुझे उस वक्त वहां पर जाना था, उस वक्त मुझे उस जर्नी पे जाना था, अगर मैं नहीं जाता तो शायद बात नहीं बनती। जी हाँ, वो आउटर सक्सेस जो आप सबको नजर आ रहा था वो मुझे वो संतुष्टि दे ही नहीं रहा था। दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, लेकिन वो गाना मेरी तरफ से नहीं है, वो गाना है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर प्रेमा आंटी जी की तरफ से फरमाइश। जी हाँ, मैंने कहा ना कि फरमाइशी गीत आ रहा है अब, तो आप जरा ध्यान से सुनते रहिए। थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी, हमेशा की तरह खूबसूरत गाने फरमाइश करने के लिए। जो गाना उन्होंने किया है फरमाइश वो है ऑफकोर्स द एवरग्रीन ना तुम हमें जानो। जी हाँ, गाऊंगी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं गाती हूँ आप लोग बोलते हो ओह निविया बस बस बस ब्रेक ब्रेक ब्रेक, चलिए ठीक है मैं यहीं रुक जाती हूँ। ये गाना सुनते हैं, और हेमंत कुमार जी का ये खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए। थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी, हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम को। ये रहा आपका गाना। mm-hmm.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ जैसे हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना साहब के बारे में, एक वक्त था उनकी नजदीकियां अमृता सिंह से बहुत ज्यादा थी। जी हाँ, उस वक्त वो प्यार में थे और प्यार में वो फूले नहीं समा रहे थे। जी हाँ, जैसे मैंने शायद आपको पहले भी बताया है कि धर्म जी के साथ, यानी द ही मैन ऑफ बॉलीवुड, और उनकी जो दोस्ती थी वो बहुत ही ज्यादा गहरी थी, और उन्हीं की वजह से उन्होंने उनकी पिक्चर में नेगेटिव रोल भी किया था, विलेन का कैरेक्टर भी प्ले किया था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये वो वाला वक्त था जब विनोद खन्ना अगर विलन भी बनते थे तो लोग उन्हें प्यार करते थे। उन्हें लगता था कि अगर विलन इतना खूबसूरत होगा तो विलन हमें बुरा नहीं लग रहा। जी हाँ, अमृता सिंह से उनकी नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और एक पार्टी में जो धर्म जी ने उन्हें बुलाया और वो नहीं आ पाए, और रीजन कुछ अमृता सिंह से रिलेटेड था, तो धर्म जी से जब वो बाद में मिले तो वो उनकी एक दूसरे से कहा सुनी हो गई। उन्होंने विनोद खन्ना को धक्का दे दिया, विनोद खन्ना ने उनकी कॉलर पकड़ ली। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद ये मामला फिर से शांत हो गया और ये दोस्ती फिर से ज्यादा गहरी हो गई। इससे पता चलता है कि कुछ वक्त के लिए कोई, मतलब हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसा पल जरूर आता है जब हमें चूज करना होता है कि कोई हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब है और कोई अगर हमारा दोस्त है, तो हम अगर उनको टाइम नहीं दे पा रहे, अगर हम उनकी जिंदगी खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी हमारी रिलेशनशिप की वजह से कुछ कमिटमेंट्स है, तो ये सारी चीजों में इंसान फंस कर रह जाता है। जी हाँ, इनफैक्ट विनोद खन्ना ने अपनी पहली वाइफ को, गीतांजलि जी को, इसी वजह से छोड़ भी दिया था। जैसे मैंने कहा कि अध्यात्म के लिए वो ओशो के पास चले गए थे रहने, तो उस वक्त उन्होंने अपने करियर को इनसाउंडरी अनाउंस कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि अब मैं कोई और मूवी नहीं करूंगा, उन्होंने कह दिया था कि अब मुझे ओशो के पास जाना है, और उसी वक्त उन्होंने अपनी वाइफ जो कि गीतांजलि जी थी उनको भी छोड़ा। लेकिन ये इंसान की कॉलिंग क्या सच में इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, वो सोचने वाली बात है। मतलब अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को छोड़ देना, एक ऐसा करियर जिसके लिए आपने इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है, और एक पर्टिकुलर जगह पर आप पहुंचे हो, उस चीज को छोड़ना क्या आसान था? वेल, ये तो विनोद खन्ना ही बता सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल। आप हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से बड़े अच्छे लगते हैं, डोंट वरी, मैं गा नहीं रही हूँ, सो घबराइएगा नहीं।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेसअप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस Raffles and dance the night away ke saath live music bhi. Ticket prices are $20 per head, $50 per family, jisme couples ke saath 2 kids under 16 years are included. Aur kids under 12, yes, honge free. Zyada jankari ke liye contact Nilima on 0405-409-156. I repeat, 0405-409-156. Ya aap Briswani ki official website www.briswani.com par event section mein jaakar bhi jankari le sakte hain. Aaiye milkar Diwali ka festival manaye. Deepavali Utsav 2026. Saturday 24th October 2026. Event proudly supported by the City of Moreton Bay.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इनकॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: पतली कमर मटका के
3: हाय हाय हाय हाय हाय
2: नागिन से बल खा के

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निविया शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन का हाउसिंग मार्केट, ब्रिस्बेन में घरों की खरीद फरोख्त का बाजार अब थोड़ा सामान्य हुआ है। 2032 के ओलंपिक्स प्रोजेक्ट की वजह से बाहरी राज्यों से आ रहे पेशेवरों के कारण अच्छे इलाकों के फैमिली होम की मांग बनी हुई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन प्लान, ऑस्ट्रेलिया की विपक्षी गठबंधन पार्टी ने वादा किया है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो देश में आने वाले नए प्रवासियों की संख्या को आधा कर देंगे। वहीं डार्विन में सेना अभ्यास के दौरान हादसा, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में एक मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दुखद हादसा हुआ है जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। वहीं ब्रिस्बेन नदी और सीग्रास की रिकवरी, ब्रिस्बेन और आसपास के तटीय इलाकों से पर्यावरण प्रेमियों के लिए अच्छी खबर आई है। समुद्र में सीग्रास की परतें तेजी से वापस सुधर रही हैं जिससे समुद्री जीवों की संख्या बढ़ रही है। वहीं गोल्ड कोस्ट ब्रिज अपग्रेड, ब्रिस्बेन के पास स्थित गोल्ड कोस्ट के एक मुख्य पुल को चौड़ा करने और अपग्रेड करने का डिजाइन काम आज से शुरू हो गया है। इससे ब्रिस्बेन और आसपास ट्रैफिक जाम से राहत मिल पाएगी। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले दिल्ली में विपक्ष का बड़ा प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में आज विपक्षी नेताओं का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग के कामकाज और वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्षी संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ मार्च निकाल रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, विपक्ष के इस पैदल मार्च को देखते हुए सेंट्रल दिल्ली की कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। विजय चौक और आसपास के इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली में बिगड़ती हवा, दिल्ली में ठंडी हवाओं के दस्तक देने से पहले ही प्रदूषण बढ़ने लगा है। शहर के द्वारका समेत इलाकों में हवा की क्वालिटी काफी खराब दर्ज की गई है। वहीं कर्नाटक में AI पढ़ाई, कर्नाटक सरकार ने सरकारी स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। 6वीं क्लास से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया जा रहा है। वहीं उत्तर भारत में बदला मौसम, उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हवाओं के चलने से तापमान गिर रहा है। इसके साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले UN चीफ का पाकिस्तान दौरा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव 3 दिनों के आधिकारिक दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस दौरे में वो क्षेत्रीय सुरक्षा, बाढ़ के बाद हालातों और आर्थिक संकट पर चर्चा करेंगे। वहीं टर्की में स्पेस कॉन्फ्रेंस, तुर्की में एक बड़ी ग्लोबल स्पेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसमें दुनिया भर के अंतरिक्ष विज्ञानी जुटे हैं जहां आर्टेमिस सेकेंड मिशन और सैटेलाइट्स के भविष्य को लेकर बातें हो रही हैं। वहीं रेड सी में अमेरिकी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी। लाल सागर के पास सऊदी अरब के नजदीक अमेरिकी नेवी के एक हेलीकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने मुस्तैदी दिखाते हुए इमरजेंसी लैंडिंग कराई। खबर है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं यूरोप ने मीट इंपोर्ट पर लगाई रोक। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने नाम्बिया से आने वाले कुछ प्रकार के मीट के आयात पर रोक लगा दी है। वहां जानवरों में फुट एंड माउथ बीमारी फैलने के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं मलेशिया का बड़ा कदम। मलेशिया सरकार ने बताया है कि इस साल जनवरी से लेकर अब तक उन्होंने लगभग 10,000 म्यांमार नागरिकों को वापस उनके देश भेज दिया है। वहीं यमन में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। यमन में सुरक्षा बलों ने एक बड़े इलाके में ऑपरेशन चलाकर हूती विद्रोहियों को पीछे ढकेला है और कई अहम जगहों पर दोबारा अपना कब्जा जमा लिया है। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले भारत बनाम वेस्टइंडीज T20। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं एलेक्स ओवेचकिन का संन्यास का ऐलान। जी हां, आइस हॉकी के महान खिलाड़ी और ऑल टाइम टॉप स्कोरर एलेक्स ओवेचकिन ने ऐलान किया है कि ये उनका आखिरी सीजन होगा। 41 साल के स्टार ने कहा कि वे इस सीजन के बाद हॉकी को अलविदा कह देंगे। वहीं हांगकांग सिक्सर्स में भुवनेश्वर कप्तान। हांगकांग सिक्सर्स टूर्नामेंट में 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। वहीं पाकिस्तान का नया T20 कप्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साहिबजादा फरहान को अपना नया T20 कप्तान बनाया है। इसके साथ भारतीय फुटबॉल टीम का मुकाबला। भारतीय फुटबॉल टीम का अगला मुकाबला दो बार की वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे के साथ कोलकाता में होना है। ब्राजील के खिलाफ खेलने के बाद भारतीय टीम इस मैच के लिए जमकर तैयारी कर रही है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड्ड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
4: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 04159526600, 04159526600।
5: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
6: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
5: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
6: बिल्कुल, ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सोर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो ओमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं, दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन, धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 per head, $50 per family, jisme couples ke saath 2 kids under 16 years are included, aur kids under 12, yes, honge free. Zyada jankari ke liye contact Nilima on 0405-409-156. I repeat, 0405-409-156. Ya aap Briswani ki official website www.briswani.com par event section mein jaakar bhi jankari le sakte hain. Aaiye milkar Diwali ka festival manaye. Deepavali Utsav 2026. Saturday 24th October 2026. Event proudly supported by the City of Moreton Bay.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: सुकु सुकु
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकु सुकु।

0: पे असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: प्रिया नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

हेलो वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बरसानी 101 एम ते जी आर जी संदेश शोलक दे नाल सी बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुके है जी, ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की गाणा है, तुसी जुड़ना साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ा शुरू कर दो। रेडियो बरसानी 101 एम साडा फेसबुक पेज है जी, ते bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी ओ अपनाओ, पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो क्योंकि सानूं चंगा लगदा तुहाडे गल्लां बातां करनियां। तां चक्को तुसी अपना फोन ते साडे नाल गल्लां बातां करो, है ना। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। ते मैं तां आउनी आं, बस हुणे आउनी आं वापिस। उहनां समां तुसी सुणे जी गीतां नूं इंजॉय भी करो।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 जी। आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ सालों विच खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मां ने अंतरराष्ट्रीय मंचां ते भारत का नाम रोशन किया। BFTA कांस वेनिस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस विच भारतीय फिल्मां ने अपनी स्टोरी टैलिंग ते संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित किया है। तो मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसां जिन्हां ने विदेश विच वाही वटोरी हैगी है। शायद बहुतिया बारे तो थोनू पता होना, बहुतिया बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज है। तो अदर लैंग्वेज जी आती हैगी है तो उस बारे सानू शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं हुंदा। तो चल मैं तुहानू दसदी हां, जे थोनू समझ आती हुई तो जरूर देखियो क्योंकि फिल्मां बहुत ज्यादा वधिया है।

ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026 डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods.

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश चौलक दे नाल तुसीं बने होए। हुण इन्हां फिल्मां दे विच्चों जिहड़ियां पूरी दुनिया दे विच छाईआं होईआं ने, तां इह जिहड़ी लिस्ट मैं फरोल रही हां तां इस विच सब तों पहला नाम जिहड़ा आउंदा है उह हैगा है बूंग। जी हाँ, इह लक्ष्मी प्रिया देवी दे निर्देशन विच बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंग है फिल्म का नाम। बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 विच बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर ते रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश विच निकलता है। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतियां नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है जो बहुत वधिया लगती है, क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी है कि ना वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम जोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम जोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
3: 0400-234-235. Where do you take me?

0: की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com.
4: Family business, built on trust. अगर आपकी शादी होने वाली है, तो आज ही फोन कीजिए Commonwealth Civil Marriage Celebrant Parmanand को 04111-27035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 Balaclava Street, Wollongabba में। For weddings, engagements, renewal of vows और commitment ceremonies घर पर, hall या park में, book with Parmanand. Call now on 04111-27035. Remember, the number is 04111-27035. या फिर email करें parmanand@optusnet.com.au पर. For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name, Parmanand. A professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वाने हम ते जी आर चे संदेश चौलक दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। वो फिल्म का नाम हैगा मसान, नीरज घायवान दी डेब्यू फिल्म। वाराणसी विच दो कहानियां, देवी जिस जो रिचा चड्ढा बने सी ते दीपक जो विकी कौशल बने सी दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये हैगी है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उथे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्ढा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: करते हैं हीरो की
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: बियॉन्ड व्हाट यू सी, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म है किया ऑल दैट ब्रीथ्स। ये नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है, बट नो नो नो नो नो नो, ये हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। ऑल दैट ब्रीथ्स ए इंडियन मूवी है कि शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री हैगी है। 2023 ऑस्कर दे लई नॉमीनेट हुई सी। 90 मिनट की ये फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलन बचाते हैं। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड ते संडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड जूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं कि ने। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिले है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
5: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
6: Hey, yo, Sean.
7: Kadi nak tak mere raah di

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन आल से बने हुए हो। इस तो बाद अगला जिहड़ा नाम है इस लिस्ट विच वो है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सेस अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नु करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्गिया हैगा। इस दे नाल ही एक होर फिल्म बारे दसनी है वह हैगी है जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसके प्रतिरोध की कहानी हैगी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी राधिका आपटे ते सुरविंद चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच हैगे ने। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन्हां महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: in the house.
1: जी देखो वेड़ा तो हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का, पर जाने तो पहला थोड़ू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी से मैं सोचा वह भी दस दिनी है। तो उस फिल्म का नाम है चिट्टी डिसिप्लिन जी है। चैतन्य वालों निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आधारित हैगी है। फिल्म वेनिस फिल्म फैसटिवल एफ आई पी आर ई एस सी आई अवार्ड मिले हैगा। अल्फोंसो कुआरोन हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इस दे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से गए। फिल्म एक संगीत साधक की कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा दी कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि यह फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर आ करो तुम साढ़े रेडियो बरसवानी 101.1 FM साढ़े फेसबुक पेज है जी बरसवानी @bersawani.com साड़ी ईमेल आई डी है। जरिए जेड़ा भी तुसी अपनाना चाहते हो अपना लो, पर सा गलबात जरूर करो है ना। तो बाकी मैं तो यही कहना कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करो। सत श्री अकाल।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न बे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कंपटीशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: am your only Adam.
1: नवीं क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया

कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है. मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है. स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं. प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को. फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कंपटीशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वर डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। इह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्री केसेस नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818, दैट्स 3804-3818।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हा? लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381360 है और

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

से जो पर सो कर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड entertainment store well known for its quality service and reasonable prices।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026, सैटरडे 24 अक्टूबर 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ताँ जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय

0: आर्जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, क्या हाल है मेरी ब्रिस्बेनी फैमिली, सभी को नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। आंखें खुल गई है ना अलार्म को स्नूज कर करके, उसकी भी भाई फीलिंग्स को हर्ट्स जो है ना वो हम कर ही चुके हैं, और अब फाइनली बेड को भाई बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। मैं हूँ आपकी मॉर्निंग कंपेनियन चांदनी जैन, जी हाँ, और अगले एक घंटे तक हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो आपको अपडेटेड भी रखेंगी, एंटरटेन भी करेगी और मूड भी ना फ्रेश करेगी। तो चाहे आप घर से काम के लिए रेडी हो रहे हैं, स्कूल ड्रॉप के लिए निकल रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं भाई, या फिर कॉफी के साथ विंडो से बाहर देख रहे हैं, ब्रिस्बेनी को अपना मॉर्निंग पार्टनर बना लीजिए। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन यही है भाई, कॉफी पर्सन या फिर चाय पर्सन? और अगर दोनों है ना आपका आंसर, तो भाई मैं भी आपके साथ हूँ, क्योंकि मुझे भी ना दोनों चीजें ही अच्छी लगती है। तो आइए फिर टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम के एक प्यारे से गीत के साथ, और सुनेंगे फिर हम उसके बाद अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन क्या कुछ है भाई आज खास, ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेनी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बेन में। सो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब आ जाते हैं हम मॉर्निंग अपडेट्स पर। सबसे पहले भाई, अब मॉर्निंग है भाई, वेदर तो जानना बनता ही है। ब्रिस्बेन में आज वेडनेसडे यानी कि 7th ऑफ अक्टूबर को टेम्परेचर अराउंड 18 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का फोरकास्ट है और शावर और 2 यानी कि हल्की सी बारिश के जो चांसेस है वो दिख रहे हैं। तो अगर आप घर से निकल रहे हैं, अम्ब्रेला को ले जाना ना भूलिएगा दोस्तों। जी हाँ, इसे अपनी कैटेगरी में डाल ही लीजिए। सो आइए इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब BOM के फोरकास्ट के मुताबिक क्वींसलैंड की। जी हाँ, क्वींसलैंड के कुछ एरियाज में वेदर कंडीशंस को लेकर अटेंशन जरूरी है। अथॉरिटीज ने इस सीजन में सीवियर वेदर इंक्लूडिंग साइक्लोन रिस्क को लेकर वार्निंग भी दी है। तो आगे बढ़ने से पहले हम सुनेंगे ये प्यारा सा गाना और उसके बाद जानेंगे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑन रीटू ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक है जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी में प्रोग्राम जाने का सफर। और एक इम्पोर्टेंट क्वींसलैंड की बात करें दोस्तों, तो क्वींसलैंड में डिजास्टर रिकवरी फंडिंग को लेकर फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो है डिबेट चल रही है। करंट प्रपोजल में नेचुरल डिजास्टर के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग कॉस्ट को स्टेट्स और कॉमनवेल्थ के बीच 50-50 शेयर करने की बात है, जबकि पहले कॉमनवेल्थ का एवरेज कंट्रीब्यूशन अराउंड 64% रहा है। क्वींसलैंड ओपोजिशन लीडर डेविड क्रिसाफोली ने कहा है कि इस इशू पर फेलियर ऑप्शन नहीं है, स्पेशली सीवियर वेदर सीजन को देखते हुए। तो ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड लिसनर्स, वेदर को लाइटली मत लीजिएगा, स्टे इनफॉर्म्ड, स्टे सेफ। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इसी के साथ दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं भाई इंडिया की खबरों की तरफ। आज की मेजर स्पोर्ट्स हेडलाइन है हरमनप्रीत कौर की कैप्टेंसी। जी हाँ, हरमनप्रीत कौर ने इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की ऑल थ्री फॉर्मेट्स टेस्ट ओडीआई और टी20 की जो कैप्टेंसी है उससे स्टेप डाउन करने का डिसीजन अनाउंस किया है। उन्होंने इंडिया को वुमेन्स क्रिकेट में हिस्टोरिक सक्सेस तक लीड किया और इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी रही हैं। उनकी लीडरशिप जर्नी पर क्रिकेट वर्ल्ड से ट्रिब्यूट्स आ रहे हैं, तो हरमनप्रीत कौर के लिए भाई एक बिग सैल्यूट तो बनता है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो प्रेसवाणी में। तो दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल साइंस अपडेट आप सभी के बीच हाजिर है। फ्रांसिस हाल्जन को 2026 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से ऑनर किया गया है। उनका काम जो है वो न्यूट्रिनोस पर है। ये टाइनी कॉस्मिक पार्टिकल्स हैं जो कि यूनिवर्स के बहुत ही मिस्टीरियस प्रोसेसेस को समझने में साइंटिस्ट की हेल्प करते हैं। उनके वर्क का कनेक्शन जो है वो एंटार्क्टिका में आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी से है। तो दोस्तों, अब सोचिए, हम सुबह कॉफी के बिना फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे और साइंटिस्ट अंटार्कटिका की आइस के अंदर कॉस्मिक पार्टिकल्स ढूंढ रहे हैं। है ना मजेदार बात। आइए इसी के साथ भी बढ़ते हैं आगे। थोड़ी देर बाद करेंगे और भी बहुत सारी बातें ऑन योर रेडियो प्रेसवाणी।

हाँ जी, जहाँ इतनी सारी बात कर ली तो बॉलीवुड गॉसिप छोड़ दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर सलमान खान की बात करें तो सलमान खान को दिल्ली हाई कोर्ट से काला हिरन फिल्म के रिलीज से रिलेटेड मैटर में नोटिस मिला है। कोर्ट ने सलमान खान से रिस्पांस मांगा है एक प्लिया पर, जो कि फिल्म के रिलीज को लेकर उनकी सूट को स्टे करने से रिलेटेड है। तो सलमान फैंस, ये लीगल मैटर अभी कोर्ट प्रोसेस में है, इसीलिए सोशल मीडिया रूमर्स को फैक्ट समझने से पहले ऑफिशियली अपडेट का वेट करना बेटर है। वहीं पर दोस्तों, आज की जो सबसे इंटरेस्टिंग बॉलीवुड कनेक्टेड स्टोरी है ना, उनमें से ये एक है। एक फॉर्मर सेलिब्रिटी ड्राइवर ने अपनी लाइफ में एक कम्प्लीटली डिफरेंट टर्न लिया और मोमोज का बिजनेस स्टार्ट किया। सूरज लामा, जो कि रिपोर्टेडली सोनाक्षी सिन्हा और शाहिद कपूर जैसे सेलिब्रिटीज के ड्राइवर रह चुके हैं, जी हाँ, उन्होंने वाइफ के साथ मोमोज बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में उनकी जो वर्सोवा मोमो ईटरी को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लाइफ में प्रोफेशन कभी भी चेंज हो सकता है, ड्राइवर से बिजनेसमैन, और यही तो लाइफ है दोस्तों। आज जो रोल है जरूरी नहीं कल भी वही रोल हो। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, मॉर्निंग को बेटर और फील गुड बनाने के लिए ना भाई पॉजिटिव वाइब्स तो फैलाना जरूरी है। वैसे दोस्तों मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कभी कभी हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करके अननेसेसरीली अनहैप्पी हो जाते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं किसी का बिजनेस चल रहा है, किसी की शादी हो गई, किसी के पास न्यू कार है, किसी ने हाउस ले लिया और हम सोचते हैं कि मैं पीछे रह गया। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, लाइफ कोई रेस नहीं है। किसी का चैप्टर 10 चल रहा है तो आपका चैप्टर 5 है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों आपकी स्टोरी खराब है या खत्म है। मे बी बेस्ट चैप्टर अभी आना बाकी है। सो टुडे अपने आप से एक प्रॉमिस करिए कि मैं अपनी प्रोग्रेस को किसी और की प्रोग्रेस से कंपेयर नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और हाँ दोस्तों, आज किसी एक पर्सन को जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट जरूर करना, हमेशा हर शो में कहती हूँ। आपको नहीं पता, शायद आपका एक सिंपल सा यू लुक ग्रेट टुडे कहना किसी का पूरा दिन बेटर बना सकता है। इसीलिए कहती हूँ, हर चीज की शुरुआत, जैसे हम चाहते हैं ना कि हमारे साथ अच्छा अच्छा हो, तो उसकी शुरुआत सबसे पहले खुद से कीजिए। हम किसी को अच्छा फील कराएं तो हमें खुद अच्छा फील होगा। जब हम किसी की तारीफ करेंगे, किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि इम्प्रेस करने के लिए जबरदस्ती कुछ ना कुछ करें। जेन्युइनली अगर आपको किसी की कोई चीज अच्छी लगती है, उसको जरूर आप जरूर बोलें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। वैसे दोस्तों, मैं सोशल मीडिया जब देखती हूँ ना, कि मुझे जब मैं सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ चीजें देखती हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तो मुझे ना एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन लगती है, और मे भी शायद जो मैं आप सभी से कहूँ वो आपको भी लगेगी। दोस्तों, हम दूसरों की ना हाईलाइट रील देख कर अपने बिहाइंड द सीन्स लाइफ कंपेयर करने लगते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी का परफेक्ट ब्रेकफास्ट हमें दिखता है, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हॉलीडेज, परफेक्ट रिलेशनशिप, इवन परफेक्ट घर या उसकी लाइफ या उसकी जो उसने खुद को मेंटेन किया है बॉडी ये। लेकिन दोस्तों, कैमरे के पीछे क्या हो रहा है वो हमें भी नहीं पता होता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर सोशल मीडिया से टच में रहना है तो वो इंस्पिरेशन के लिए यूज कीजिए, कंपैरिजन के लिए नहीं। जी हाँ, और अगर आज मॉर्निंग में आपका मूड थोड़ा सा लो होता है ना इन सब चीजों को देख के, देन टेक अ डीप ब्रीथ, पानी पियो, म्यूजिक लगाओ और बस एक काम कंप्लीट करो भाई, स्मॉल विंस काउंट। जी हाँ, और वैसे भी दोस्तों, हमें ना चीजों को ना सोशल मीडिया में देख देख के अपनी लाइफ को नहीं चलाना चाहिए। सोशल मीडिया में बहुत चीजें हैं, वो सब कमाई कर रहे हैं भाई, हमें अपनी लाइफ को ऐसे नहीं चलाना है। जो जेन्युइनली चीज है, जो आपको वाकई ही अच्छी लगती है, वो चीज कीजिए जिससे आपको अच्छा लगे, आपको देखकर दूसरे भी सीखे कि नहीं, वाकई ये चीज करके हमें लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी। इसीलिए कंपैरिजन, ये कोई कहते हैं ना, कंपैरिजन सॉल्यूशन नहीं होता। कंपैरिजन कर करके ना हम अपना प्रेजेंट बिल्कुल खराब कर देते हैं। सही बात है ना। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

तो मेरे ब्रिस्बानी फैमिली, आज हमने बहुत सारी बात की है ब्रिस्बेन वेदर की, क्विंसलैंड सी व्यू वेदर आउटलुक की, डिजास्टर फंडिंग की, इवन हरमनप्रीत कौर की कैप्टेंसी जानने की, नोबेल प्राइज की, सलमान खान की और भाई बॉलीवुड के मोमक कनेक्शन तक बहुत सारी बात। लेकिन शो खत्म करने से पहले एक बार फिर से भाई वेदर रिमाइंडर, ब्रिस्बेन अराउंड 18 to 28 डिग्री सेल्सियस और 2, तो भाई अम्ब्रेला ले जाना तो भूलिएगा ही मत। तो दोस्तों आज के मॉर्निंग में बस इतना ही, याद रखिए मुस्कुराते रहिए, कनेक्टेड रहिए और अपने दिन को खुद ब्यूटीफुल जरूर बनाएं। सो वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, हैव अ ब्यूटीफुल वेडनेसडे, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप द म्यूजिक लाउड, टेक केयर, बाय बाय।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लंदन से अमेरिका जा रही फ्लाइट BA295 में इमरजेंसी, अचानक 9000 फीट नीचे आया विमान। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA295 ने आयरलैंड के आसमान से ऊपर उड़ान भरते समय इमरजेंसी घोषित कर दी, क्योंकि विमान अपनी सामान्य ऊंचाई से तेजी से नीचे आने लगा। बोइंग 777 लंदन हीथ्रो से शिकागो ओ हेयर जा रहा था, जहां आयरलैंड के ऊपर से गुजरते हुए ये लगभग 37,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आकर करीब 9,000 फीट पर आ गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से विमान की ऊंचाई में आए इस बदलाव का पता लगा। पाकिस्तान में फिर बनी टकराव की स्थिति, सड़कों पर उतरे इमरान खान के समर्थक। पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। अपने नेता इमरान खान की रिहाई के लिए उनके हजारों समर्थकों ने राजधानी इस्लामाबाद की ओर कूच किया। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार के बीच चल रही बातचीत पूरी तरह नाकाम रही, जिसके बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। मेडिसिन के लिए 3 वैज्ञानिकों को नोबेल। रोशनी की मदद से दिमाग के न्यूरॉन्स नियंत्रित करने की खोजी तकनीक। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये तीनों वैज्ञानिक दिमाग की अलग अलग नर्व सेल्स की एक्टिविटी को चालू या बंद करने के नर्व सिस्टम पर काम कर रहे थे। 2026 का मेडिसिन नोबेल जर्मनी के पीटर हेगेबैन और जॉर्ज नागेल और अमेरिका के कार्ल डाइसोरोथ को दिया गया है। इन तीनों ने लाइट गेटेड ऑयल चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स पर रिसर्च की है। वो जर्मनी और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं। अब दिमाग से डिलीट होगी दर्दनाक याद, बोस्टन यूनिवर्सिटी का बड़ा दावा। इनग्राम टेक्निक से यादों को मिटाना होगा संभव। आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो सकता है कि आप दर्द भरी यादों को मिटा सकें, क्योंकि विज्ञान अब सिर्फ यादों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें बदलने और दबाने और दोबारा एक्टिव करने की ओर भी कदम बढ़ा चुका है। अमेरिका की प्रसिद्ध बोस्टन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ब्रेन एंड मेमोरी के एसोसिएट प्रोफेसर स्टीव रामिरेज ने अपनी किताब हाउ टू चेंज अ मेमोरी और हालिया शोधों के जरिए नया तूफान ला दिया है। ये किताब रॉयल सोसाइटी त्रिवेदी साइंस बुक प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट हो चुकी है। इसके अनुसार याद को मिटाना, दोबारा जिंदा करना या नया प्रारूप देना अब संभव है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। यूपी चुनाव से पहले मोदी मंत्रिमंडल में होगा बड़ा फेरबदल। पिछले 4 महीनों में कम हो चुके 5 मंत्री। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री बीएल वर्मा को राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। दोनों राज्यसभा का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जाहिर है इसके बाद वो मंत्रिमंडल में नहीं रह पाएंगे। अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279701।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत सा प्यार भरा वेलकम है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अमिता नमस्ते।
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू वेंसडे।
1: वेलकम टू वेंसडे।
2: वेलकम
1: टू गो ऑन थर्सडे फ्राइडे टू गो
2: एंड वी ओनली हैव थर्सडे टू गो।
1: या दैट्स राइट, एंड देन कम्स द वीकेंड।
2: Then comes the weekend.
1: All the housework you have to do around the yard, you have to do probably mow the lawn. Oh, I don't think the lawn would be a problem at the moment, would it?
2: Well, we had we had some rain.
1: Yeah, but the grass won't grow in a couple of days, would it?
2: You never know.
1: Well, depends.
2: You know, sometimes when you stand, you can literally see the grass growing.
1: I know we do.
2: Remember, at one time, you can just be standing at the window and watching it happen.
1: I know. तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। अब जब बात कर रहे हैं कि बारिश हुई है यहाँ पर, शावा ओ टू कहा गया है आज के लिए, 19 and 28 रहेगा 3 millimeter। टुमारो कल के लिए पार्टली क्लाउडी रहेगा, 15 and 25 रहेगा, बारिश नहीं होगी दोस्तों। फ्राइडे को भी पार्टली क्लाउडी, 16 and 28 नो रेन। और सैटरडे को पॉसिबल शावर, 17 and 31 2 millimeter। संडे को पॉसिबल शावर, 18 and 31 2 millimeter। और मंडे को बारिश नहीं है दोस्तों, 19 and 32 हो जाएगा। ट्यूजडे को शावा ओ टू 10 millimeter कहा गया है। तो चले कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं और एक गीत सुनते हैं, देन वी विल कम बैक,
2: देन वी विल वरी अबाउट द ट्रैफिक।
1: ओके
2: ओके श्योर।

0: तड़का ऑन रिया,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: नहीं,
1: है
0: भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ।
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिसनिंग टू यू।
1: दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंड।
0: नॉट लिसनिंग टू
1: यू। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: ओके, आई एम नॉट विद
1: हर। इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट। Okay, that's it.
2: That's so true.
0: और एक बार मैं जरूर इसमें गाना में आए, मैं सहमत हूं। जो लेडीज है ना, ये बहुत जोर गाड़ी चलाते हैं, एज इफ वो भी कुछ करने को बचा है। यू नो, योर माइंड इज ऑलवेज प्रोग्राम्ड, मुझे ये करना है, वो करना है। यू हैव गॉट फोर थिंग्स गोइंग एट वन टाइम। वी मैन आर वेरी फोकस्ड, वन थिंग एट अ टाइम। आप लोग गाड़ी ऐसे चलाते हो कि जैसे कुछ टाइम भाग रहा है और ये करना है।
2: You're not programmed to do more than one thing at a time.
0: Man, I tell you, yeah, because we perfection है हमारा एक चीज़ पर। But you think do four things. गाड़ी बहुत खराब से चलाते हैं आप लोग, बहुत जोर चलाते हैं आप लोगों को। आर्मी में जितना ड्राइवर्स है ना, should be ladies. Okay, another can of worms opened up. Fiji, Vatia cocaine consignment remains under guard. Police and the director of public prosecution say that 2.64 tons of cocaine, valued at approximately Fiji 3 billion, remains in police custody with continuous security and surveillance. An application to destroy the drug is scheduled for 15 October, although the court could order further testing and weighing first. अरे यार, मारो गोली, छोड़ो उसको, सीधा खत्म करो। हेल्थ कंसर्न्स ग्रो ड्यूरिंग बत्ती की वाटर शॉर्टेज। द आइलैंड्स नर्सिंग स्टेशन हैज रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन डायरिया केसेस एज रेन वाटर सप्लाईज रिमेन लो। हाइजीन प्रोडक्ट्स हैव बीन डिलीवर्ड टू बत्ती की डिस्ट्रिक्ट स्कूल व्हाइल ऑफिशियल्स आर चेकिंग इट्स वाटर सप्लाई। रेजिडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड टू बॉइल ड्रिंकिंग वाटर फॉर एटलीस्ट वन मिनट। सुबह हवा क्लीन अप कंटिन्यूज। द अबंडेंट पैसेंजर फेरी एमवी वेस्टलैंड हैज बीन रिमूव फ्रॉम मस्किटो आइलैंड आफ्टर फ्यूल ऑयल एंड अदर वेस्ट वेर क्लियर्ड। इट इज द थर्ड वेसल रिमूव्ड अंडर द हवा क्लीन अप प्रोग्राम विद एडिशनल रेक्स एक्सपेक्टेड टू फॉलो। ऑस्ट्रेलिया एंड क्वींसलैंड Coalition release migration policy. The opposition proposed cutting net overseas migrants to 100,000 annually for 2 years, before increasing it to about 160 by the fourth year. Graduate student and bridging visas would be reduced significantly. Business and education groups warn of skill shortages. Yeah. While opposition leader Angus Taylor acknowledges some aged care workers could be affected. Warning for patients using weight loss injections. Australian anesthetist say patients must disclose drugs such as Ozempic, Mounjaro, or unapproved peptides before an operation. A new study identified an 11-fold increase in regurgitation of aspiration risk. Oh man! Under general anesthetic among GLP-1 users, patients should follow the anesthetist instructions and not alter prescribed drug medications independently. Calls for independent inspection of Queensland mental health wards. Former patients have reported physical attack and sexual misconduct inside locked regional facilities.
2: Oh.
0: Advocates say Queensland still lacks a body conducting regular independent inspections, despite Australia agreeing to such oversight under an international treaty almost a decade ago. That's it. All right? Okay. What is this? This is, I think, a residence of Waidamudamu, this is Fiji News, in Koronivia, are moving closer to secure home ownership after 269 registered 99-year lease were handed to the Director of Lands and Distribution. The project formalizes 265 residential lots and gives family long-term legal security. Okay.
2: So what does it mean? In the past, they used to lease the land for like 99 years.
0: Yeah.
2: And now?
0: They renew every 99.
2: Yeah.
0: They have given some again for 99 years.
2: Oh, okay.
0: So they get rent every year.
2: Right.
0: More than much in those days. I don't know how much it is now. Okay. All right. ओके कोट बदले परिवार को क्या बोलते हैं महंगी चीजों से ज्यादा आपका वक्त और प्यार याद रहता है सुन लिया आपने
2: दैट इज ट्रू
0: ये महंगी महंगी चीजों देने से कोई फायदा नहीं दोस्तों उनको आपका वक्त चाहिए आपका प्यार चाहिए राइट ओके हाउ अबाउट दिस सॉन्ग
2: ओके यप

0: ये गीत हम सब उस लेडीज के लिए प्ले किए हैं क्योंकि आप लोग सब प्रिटी हैं
1: जी.
0: माय मम यूज्ड टू लव दिस सॉन्ग बाय रॉय ऑर्बिसन.
1: या द ओरिजिनल. आई मीन या मी टू. आई स्टिल लव इट. आई स्टिल लिसन टू इट वेरी ऑफन.
0: या सो
1: एवरी वीकेंड
0: टू ऑल द प्रिटी वुमन आउट देयर. माय नंबर हियर इज 04-3003-1701. आप किसी भी समय कॉल करके कुछ रिक्वेस्ट करना चाहे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम वादे के साथ कहते हैं कि हम जरूर उसे पेश करेंगे रेडियो पर. ठीक है.
1: Putting yourself out there, are you?
0: Well, yeah, why not? In case they want to listen to some.

0: ओके ओह, कभी बाण चलाए, कभी आंख मारे, ये सब क्या हो रहा है यार दुनिया
1: कभी
0: में?
1: गोली
0: कभी
1: मारे,
0: आंखियों से गोली मारे, ब्रेक।
2: कभी मेरी हाय हाय गोली मारे।

0: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोर्ट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेसअप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: Okay, Radio Biswani. Or what else? There are a lot of theories about why things went wrong of execution. Mm-hmm. Because some say the drug companies don't want to make that drug anymore. Oh. And they were bought from somewhere else. That's speculating that. Mm-hmm. And now the governor can either stop further attempt and give her life sentence without parole. But she won't be let off. She will either save life without parole or another attempt. Now, it could be that they might not do that because she can survive this one. Mm. What happened, her veins were very hard. It was so hard that they tried 7 times.
2: Oh, God.
1: And one time the needle got bent. It was bent. Tera again.
2: Tera.
1: So, what is this woman, man? Who is this woman? So there is a real problem at the moment. Mm-hmm. They don't know which way to go. In a prior case, some way back, this person didn't die in the electric chair. Mm. The shock didn't kill him, but then it was done again. So we'll see what happens. सबसे अच्छा काम ये सब काम मत करो दोस्तों, ये सब चीज से दौड़ो और बहुत बच कर रहो। कभी आपके साथ ऐसे हो रहा था, there are a lot of fishes in the pond. Easier said than done, isn't it?
2: Yeah.
1: I better not say anymore. Come on, yeah. Let's play a song. आज सिचुएशन ऐसे है, आगे चलकर सिचुएशन क्या होगा?
2: बच के रहना, सिर्फ बच के रहना, that's it.

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660। और वी कम टू येट अनदर एंड ऑफ अनदर प्रोग्राम। और कल हम आएंगे, कल नो फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल, ओके, बट थोड़ा पुराना गीत हम बजाएंगे।
1: ओके,
0: नो, जो हमारे दिल में आएगा हम प्ले करेंगे, ठीक है, और जो आप सुनना चाहेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, आफ्टर ऑल वी डू इट फॉर यू पीपल एनीवे, बट आप लोग तो ऐसे कर दिए कि जैसे हम बजा रहे हैं आप लोग बस हमारे गाना सुनते जा रहे हैं।
1: बट मे बी दे एंजॉय व्हाट वी प्ले।
0: आई डोंट नो, यू थिंक सो?
1: आई वुड होप सो।
0: वेल, यू फॉर वन डोंट एंजॉय व्हाट आई प्ले।
1: डू वी हैव लिसनर्स?
0: We have listeners.
1: There you go. Then they're enjoying what we're playing. Mm. And when they feel like listening to something in particular, then they request a song. Mm. See? That's how it goes. Sometimes they don't want to disturb us.
0: Or sometimes they just help us by giving a song. They know what is happening. Mere paas mere dost log hai jo mujhe help karte hain, kabhi kabhi gana bhejte hain mere paas. Ki ye gana bajao, to phir dekhte hain Meeta kya karti hai.
1: Yeah. All right, जाती हूँ मैं।
0: कहाँ भाई, जल्दी है क्या?
1: कल मिलेंगे,
0: कल मिलेंगे दोस्तों।
1: All right, have a beautiful, beautiful day and
0: have a safe
1: take
0: day.
1: Care.
0: Always, always keep safety in mind.
1: Have
0: एक कदम रखने से भी पहले।
1: नमस्ते।
0: और लेज में कदम रखने से पहले सोचना पड़ेगा आपको।
1: Each step calculated.
0: कहाँ जा रहा है आपका पैर, सही जगह या गलत जगह? नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।

प्यार मिला नहीं खुद को खोने से मिला, खुद से प्यार मिला नहीं खुद को खोने से मिला, खुद से मैं इतना मिली ही नहीं जितना तेरे होने से मिली। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर एक बार फिर से आप में सताक्षी के साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। जी हाँ, कई बार कहते हैं ना कि खुद को पाने के लिए खुद को खोना जरूरी होता है, और कई बार आप अपने आप को नहीं पहचान पाते लेकिन दूसरा आपको पहचान लेता है, और वो बंदा जो है वो आपके दिल के बहुत ही करीब और बहुत ही खास हो जाता है। भाई ऐसे ही तो हमारे लिए आप भी हैं। देखिए ना, अकेले अगर हम चलते जिंदगी के सफर में तो क्या खाक खोज पाते खुद को, लेकिन आज आप हमारे साथ हैं तो जिंदगी का ये सफर भी खुद को समझने का सफर बन गया है। और आज इसी सफर पे सताक्षी आपके साथ एक बार फिर से है रीचू प्रस्वानी 1701 एम पर, कुछ खास जज्बात, कुछ खास बातें और हमारे और आपके मॉर्निंग का साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी और मेरे ब्रेकफास्ट शो की इट हैपेंस की रीचू प्रस्वानी 1701 एम पर, और आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस।

सो वेलकम बैक टू छापन सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो वर्सवानी 1701 एम पर। जी हाँ, आपके मॉर्निंग के वक्त को हम आपके लिए और भी खास और स्पेशल बना रहे हैं, और अभी ये वक्त स्पेशल है उनके लिए जिनके लिए आज का दिन स्पेशल है। सो आज जिनका जन्मदिन है, जिनका आज बर्थडे है, बर्थडे बेबीज को जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और सबसे अच्छी बात यह बर्थडे पर यह होती है कि आप खुद को बड़ा छोटा फील करते हैं, बड़ा नन्हा मुन्ना राही हूँ फील करते हैं, और आपका दिल करता है शरारत करने का और जिंदगी को जीने का। देखा जाए तो बर्थडे की जो एक्साइटमेंट होती है आप किसी भी एज में हो वही होती है ना, वो विशेस की एक्साइटमेंट, या फिर लोग आपको फोन करेंगे, आपको विश करेंगे, ये एक्साइटमेंट जो है, या गिफ्ट्स मिलेंगे, एक्साइटमेंट जो है ये हर एज में जो है वो सिमिलर रहती है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि हमारे अंदर कहीं एक बच्चा जिंदा रहता है। तो आई होप कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत हो। जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है आज, उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो वक्त है आपका एक दूसरे के साथ, आज ये जो आप वक्त गुजार रहे हैं, ये वक्त इसकी खूबसूरती हमेशा ऐसे ही बनी रहे, आप जिंदगी में हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। इसी विश के साथ विश करते हैं उन्हें भी जिनके लिए आज का दिन बहुत ही स्पेशल और खास, यानी आज के दिन जिनकी जिंदगी में कुछ खास होने वाला है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके नाम ये अगला ट्रैक, स्टे ट्यून्ड रेडियो वर्सवानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए छापन्स। और ये अगला ट्रैक है आपके लिए

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: बियॉन्ड व्हाट यू सी, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: अच्छा आप सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्बेन पर दोस्तों सताक्षी के साथ। देखिए आपकी लाइफ में चाहे आप वर्क प्लेस पे हो, आप घर में हो, आप परिवार में हो, आप रिलेशनशिप में हो, एक चीज जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि बस आप सबके लिए तभी तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी कही हर सही गलत बात को सही ठहराते हैं, है ना। आप उसे जो कहा जाए आप करते हैं, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आप खुश रहते हैं, आप अगले की बातों को, उसकी लाइफ को, उसकी जिम्मेदारियों को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद के पंख फैलाने की कोशिश करते हैं, जिस दिन आप उड़ने की कोशिश करते हैं, जिस दिन आप गलत को गलत कहने की कोशिश करते हैं, जिस दिन आप अपने लिए आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरे के सपने को थोड़ा सा साइड करके ही कह लें, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उस दिन आप अच्छे नहीं रहते। उस दिन आप बदल जाते हैं, उस दिन आप मुफ्त हो जाते हैं, उस दिन आप बदतमीज भी हो जाते हैं, उस दिन फिर आप उस रिश्ते के लायक नहीं रहते। तो अब ये सोच लीजिए भाई कि हमेशा दूसरों की सुननी है या फिर खुद के लिए जीना है, चॉइस आपकी है क्योंकि लाइफ आपकी है। एक और ट्राई किसी बात पर एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन। आप सुन रहे हैं ठापन।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी।

की झापन सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रिजु प्रस्वानी 1701 एम पर। कई बार आप चीजों को बड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, चलाने की ठीक झर्रे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैक पे हर चीज आ जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है ना। वो जख्म, वो दर्द, वो फेलियर्स, वो सब कुछ आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं बट वो संभल नहीं पा रहा है। देखिए, जब लाइफ में एक प्रॉब्लम शुरू होती है ना, सपोज रिलेशनशिप की शुरुआत हुई, वो फिर आपके फाइनेंशियल इश्यू भी बन जाता है, आपका हेल्थ इश्यू भी बन जाता है, आपके अग्रेशन की वजह भी बन जाता है, तो एक छोटी सी बात से शुरुआत होकर आपकी लाइफ पे वो इफेक्ट डालना शुरू कर देती है हर एरिया में। अब इससे निकले कैसे, क्योंकि भाई सब कुछ तो ट्राई कर लिया। तो देखिए, कभी कभी चीजों को ना वक्त पे छोड़ देना सही होता है। धीरे धीरे वक्त के साथ चीजें भी नॉर्मल होती है, जैसे जैसे बिगड़ी थी वैसे वैसे सुधर भी जाएंगी, लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी और आप फिर से ट्रैक पर चीजों को ला पाएंगे। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उनके लिए कोशिश कर सकते हैं, है ना। एक और ट्रैक इसी बात पर एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस रिजु प्रस्वानी 1701 एम पर।

0: साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
5: It happens on Sataakshi ke saath Radio Briswani 1701 AM par, aur ye waqt hai gaano ki hat-trick ka. तो हाँ, आज के तीन बैक टू बैक ट्रैक्स यानी कि गानों की हैट्रिक लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। आइए सुनते हैं आज के गानों की हैट्रिक का ये पहला ट्रैक।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

गुड मॉर्निंग, इट हैपेंस सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्थानी पर दोस्तों सताक्षी के साथ। जी इट हैपेंस में आज हम आपसे फिर से आपकी जिंदगी की, आपके एहसासों की और आपके मॉर्निंग की कुछ खास बातें आपसे कर रहे हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि अगर जिंदगी में कभी तुम्हें दर्द मिला है, कभी पेन मिला है, तो उसे छोड़ दो, वक्त के साथ साथ हर घाव भर जाता है और वो ठीक हो जाएगा। पर देखा जाए तो क्या वाकई वक्त हर घाव को भर देता है? क्या वाकई जिंदगी में वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाती हैं? शायद नहीं, क्योंकि जब हम एक दर्द से गुजर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमारी जिंदगी का आखिरी दर्द है। उसके ऊपर और भी घाव लगेंगे, और भी दर्द आएंगे, और वो दर्द, वो पेन नीचे दबता चला जाता है। जब भी आप अपने इमोशंस को, अपने पेन को सप्रेस करते हैं, आप उसे दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो और ज्यादा गहराई के साथ निखरता है, और ज्यादा आपको दर्द होता है, आपको और ज्यादा पेन देता है। इसलिए वो नासूर बन जाए, एक ऐसा घाव बन जाए जो भर ना पाए, क्योंकि उसके बाद ही ऐसे ही करते करते ही आपको एक वक्त ऐसा आता है कि बहुत गुस्सा आने लगता है। जब आप बहुत ज्यादा इमोशंस दबाते हैं ना, तो वो आपके गुस्से का रूप लेते हैं। इसलिए ऐसा मत कीजिए खुद के साथ। और यार, एक्सप्रेस करना लाइफ में चीजों को बहुत जरूरी है, अपने इमोशंस को खासकर एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेस कीजिए अपनी बातों को, अपने इमोशंस को, ताकि आप लाइफ को और बेटर तरीके से जी सकें और अपने और अपनों के सपनों को पूरा कर सकें। एक और ट्रैक इसी बात पर सताक्षी के साथ एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

लाइफ में खुल के जीना बहुत जरूरी है। कई बार जब आप खुल के जीने की कोशिश करते हैं तो आपको सेल्फिश कह दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश ना हो, है ना। कभी कभी मतलबी होना, सेल्फिश होना बहुत जरूरी होता है। क्यों भाई, हम हमेशा क्यों सुनते रहे लोगों की। कभी कभी खुद के लिए जीना, खुद के लिए वक्त निकालना, खुद के सपनों को पूरा करने की कोशिश करना, छुप के कोई काम करना भी जरूरी होता है, अच्छा होता है। बस आप अगर अपने दिल की सुन रहे हैं और आपको पता है कि आपका दिल आपसे सही करवा रहा है, तो कोई भी चीज दुनिया की गलत हो ही नहीं सकती। बस वो करने के बाद आपको अपने आप से नजरें ना चुरानी पड़े। अगर आप अपनी नजरों को अपने आप से मिला पा रहे हैं तो फिर आपके लिए कोई भी काम गलत नहीं है, है ना। सबसे ज्यादा जिंदगी में ये इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम अपनी आत्मा से अपनी आंखों में आंखें डालकर कह सकें कि हम सही हैं, और उसके बाद लाइफ को जीना कैसे है। ये शायद क्योंकि हमारी जिंदगी है तो हमसे बेहतर किसी को नहीं पता, और इसीलिए देखा जाए तो हर किसी के लिए एक उम्र है ना तय की गई है कि भाई इस उम्र के बाद हम इसे एडल्ट कह सकते हैं, हम इसे वयस्क कह सकते हैं। वोट डालने का जो राइट है वो भी एक एज के बाद ही मिलता है, क्योंकि उस एज में फिर हम समझदार होने लगते हैं, हमें पता होने लगता है कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। तो अपनी लाइफ की, अपनी जिंदगी की रिस्पांसिबिलिटी लीजिए, और थोड़ा मतलबी होकर, थोड़ा सेल्फिश होकर अगर जीना पड़ रहा है या आप जीने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। एक और ट्रैक इसी बात पर, सनी सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर।